हेलो, हिंदुस्तान का मेरा तू? हेलो, मैं रंगून से बोल रहा हूँ। मैं अपनी बीवी रेणुका देवी से बात करना चाहता हूँ। हाँ हाँ

0: तो तुम क्या?
1: हाँ तो मैं क्या कह रहा था?
0: हाँ तो
1: मैं कुछ कह रहा था,
0: बोलो ना, भूल गए?
1: अरे हाँ भूल गया. चलो चलो घर चले.
2: 24 uur per dag en 7 dagen in de week. We zijn er gewoon altijd. Ujjala Radio, de grootste en beste Hindoestaanse radiozender van Nederland.

0: ना ना ना ना ना ना गुर छोड़ मुझे मत जाना, अरे ना ना ना ना ना ना गुर छोड़ मुझे मत जाना। प्यार से तेरा दिल भर देगा ये तेरा दीवाना, अरे प्यार से तेरा दिल भर देगा ये तेरा दीवाना, अरे ना ना ना ना ना ना ना ना।
1: लड्डू बोल लड्डू
0: लड्डू
1: लड्डू लड्डू लड्डू
0: लड्डू ले लो प्यार का लड्डू, ले लो प्यार का लड्डू, ले लो प्यार का लड्डू, ले लो प्यार का लड्डू। एक नजर है एक हंसी है कीमत किसकी बंधू, ले लो प्यार का लड्डू, ले लो प्यार का लड्डू, ले लो प्यार का लड्डू, ले लो प्यार का लड्डू। दिल का रंग जिगर के टुकड़े अरमानों का हीरा, दिल का रंग जिगर के टुकड़े अरमानों का हीरा, इनको लेकर बांधे लड्डू खाए दास कबीरा। रे पर देखो देखो आहा आहा, रे पर देखो देखो आहा, ले लो प्यार का लड्डू, ले लो प्यार का लड्डू, ले लो प्यार का लड्डू, ले लो प्यार का लड्डू।
2: अबे हट, खाली जिसका पेट उसका प्यार से खाली बोल, और इस लड्डू में दुनिया का हर ऐश दिया है घोल। सब जय जय इसका बोल, सब जय जय इसका बोल, सब जय जय इसका बोल। सोने का लड्डू
0: ले लो प्यार का लड्डू,
2: ले लो सोने का लड्डू,
0: ले लो प्यार का लड्डू,
2: ले लो सोने का लड्डू,
0: ले लो प्यार का लड्डू,
2: ले लो सोने का लड्डू,
0: प्यार का लड्डू,
2: सोने का लड्डू,
0: प्यार का लड्डू,
2: प्यार
0: प्यार प्यार।

मेरी तन्हाई, अक्सर ये बातें करते हैं, तुम होती तो कैसा होता, तुम ये कहती तुम वो कहती, तुम इस बात पे हैरान होती, तुम उस बात पे कितनी हंसती, तुम होती तो ऐसा होता, तुम होती तो वैसा होता। मैं और मेरी तन्हाई अक्सर ये बातें करते हैं।

ये रात है या तुम्हारी जुल्फें खुली हुई हैं, है चांदनी या तुम्हारी नजरों से मेरी रातें धुली हुई हैं, ये चांद है या तुम्हारा कंगन, सितारे हैं या तुम्हारा आंचल, हवा का झोंका है या तुम्हारे बदन की खुशबू, ये पत्तियों की है सरसराहट कि तुमने चुपके से कुछ कहा है, ये सोचता हूं मैं कब से गुमसुम कि जबकि मुझको भी यह खबर है कि तुम नहीं हो, कहीं नहीं हो, मगर ये दिल है कि कह रहा है कि तुम यही हो, यही कह

मजबूर ये हालात इधर भी है उधर भी, तन्हाई की एक रात इधर भी है उधर भी। कहने को बहुत कुछ है मगर किससे कहें हम, कब तक यूं ही खामोश रहें और सहें हम। दिल कहता है दुनिया की हर एक रस्म उठा दें, दीवार जो हम दोनों में है आज गिरा दें। क्यों दिल में सुलगते रहे लोगों को बता दें। हां हमको मोहब्बत है, मोहब्बत है, मोहब्बत। अब दिल में यही बात इधर भी है।

I have been a great admirer of this wonderful person, Mohammad Rafi. मैं हमेशा सोचता था कि भाई ये ऐसे टैलेंट बहुत रेयरली मिलता है. बहुत रिस्पेक्ट में मैं करता था उनको. रफ़ी साहब हमारे हिंदुस्तान के संगीत जगत में मेल सिंगर की हैसियत से सबसे बड़ा गाने वाला है.

कोई बालक जन्म लेता है तो सबसे पहले रोता है, नहीं रोता है तो उसको रुलाया जाता है, और वो जैसे रोने लगता है सब खुशी मनाने लगते हैं। भक्त कबीर ने बड़ी गहराई से सोचा इस बात को और महान संदेश दे दिया।

0: एक चीज के लिए एक आदमी अमूल्य हो जाते हैं, जिसकी मोल नहीं, तोल मोल नहीं होती, और ये चीज हमेशा खुदा के घर से आता है। वो चीज थी मुकेश की आवाज की टिम्बर, जिसका वो धनी था। वो टिम्बर किसी की आवाज में मुझे और सुनाई नहीं दी।
1: भाई और बहनों, ये है मेरी जिंदगी का पहला गाना।

उजाला रेडियो डे अवे प्लस पर देश भर में सुनाई देता है। तू बता दे सबको इसे बताते ओ तो में तू सुन सके तू घर में सुन सके है उजाला रेडियो और उजाला रेडियो साथ में ले जाइए तू चाहे जहां पर जाइए तू जान है तो उजाला रेडियो।

तैयार हो जा, तैयार हो जा, तैयार हो जा। सुन वालो, उजाला ला रहे हैं उजाला ब्रासा मेला फेस्ट इंडोर समर एडिशन डेन हाग में। फूड, म्यूजिक, डांस, शॉप, मार्केट, कल्चर, फैमिली एंटरटेनमेंट, टेस्ट, बॉलीवुड फाइव्स एंड बीट्स। तू तैयार हो जा और जल्दी से अपन टिकट खरीद ले। ब्रासा फेस्ट जादादाग 29 en zondag 30 augustus. GIA Event Center Den Haag mee. Get your early bird tickets now via brasafest.nl. Super early bird tickets vanaf slechts €8,50. Koop je tickets uitsluitend via de officiële festivalwebsite brasafest.nl. Brasafest, powered by utix.nl en Ujala Radio. Brasafest.nl.

रात और दिन के देवे है तोर साथ, के तोर साथ सोते है, के तोर साथ जागे है, केकर साथ तू ओतो में घूमे है, और केकर साथ तोर घर के सब काम होवे है। उजाला रेडियो के साथ तो हाँ, हमेशा सुख में और दुख में उजाला रेडियो, तू जाने।

ये है उजाला रेडियो। रात और दिन, सुबह से लेकर शाम तक, 24 घंटे सिर्फ आपके लिए।

वो चांद जैसी लड़की। उदित नारायण की आवाज में गीत आप सुनी और फिल्म देवदास से निकाला हुआ। उजाला रेडियो पर अब लता जी। हाँ, लता जी के साथ श्री कुमार को आप सुनेंगे।

जिया जले, जिया जले रात भर धुआं चले। लता जी की आवाज साथ में एम जी श्री कुमार, फिल्म का नाम दिल से, और जावेद अली की आवाज में गीत सुनिए।

आपके घर पर आने वाले दिनों में किसी का मुंडन संस्कार है, मुंडन संस्कार होने वाला है, उजाला रेडियो पर आप फरमाइश दे सकते हैं। 15 फरमाइश फॉर्मार होने तेरो ऑफ उजाला रेडियो स्टूडियो मेल नार info@ujala.net info@ujala.net

युवा उजाला रेडियो के जरिए आपने सुने हैं और भी उमर वागद हुसैन की आवाज में ये शानदार सिनेमा। और एक दम हम शुरू करते हैं यहीं से आप लोग की फरमाइश। एंड यार खेस आम सोवेन के रहने वाली है सुशीला चंद्रिका सिंह गंगाराम पदे का 80 साल का जन्मदिन आज है। तख्त सफी आ रहा है, जन्मदिन के उपलक्ष्य पर हार्दिक से बधाई शुभकामना पेश किया जा रहा है। भगवान से प्रार्थना किया जा रहा है लंबी आयु के वास्ते ताकत तंदुरुस्ती के लिए प्रार्थना किया जा रहा है। और ये भी प्रार्थना है कि आपको हर एक मुसीबत से हर एक बीमारी से दूर रखे। जियो तू सौ सौ साल सुशीला चंद्रिका सिंह गंगाराम पंडे समस्त परिवार के साथ आज धूमधाम के साथ आपके जन्मदिन मनाया जा रहा है। और आज के उजाला रेडियो के प्रोग्राम शनिचर 18 तारीख जुलाई के प्रोग्राम में 80 साल का जन्मदिन जबकि आपके है सुशीला चंद्रिका सिंह गंगाराम पंडे खुद अपने आप के लिए फरमाइश करें हनुमान चालीसा।

0: की जय।
1: आम सुल्फीन के रहने वाली हैं सुशीला चंद्रिका सिंह गंगाराम पंडे का आज 80 साल का जन्मदिन है। खुशी के मौके पर खुद अपने आपके लिए फरमाइश के प्रोग्राम में आम सुल्फीन की रहने वाली सुशीला चंद्रिका सिंह गंगाराम पंडे का 80 साल का जन्मदिन आज है और इस खुशी के मौके पर लड़कन आशा शारदा मालती रजेश और रेशमा प्यारी प्यारी माँ के लिए दो दामाद सुरेन और रवि पतो अंशिता प्यारी प्यारी सासू जी के लिए बड़ी प्यार दुलार बधाई शुभकामना के साथ पेश करें।

हम सुल्फिन के रहने वाली सुशीला चंद्रिका सिंह गंगाराम पांडे का 80 साल का जन्मदिन आज है। इस जन्मदिन के खुशी के मौके पर क्लाइंट केंद्रन वरिषा तनिष्ठा द्रोणिका नील्स विरांसा सजीवन अर्चना एंड सविता नानी के लिए मीरा और नेहा आज के लिए बड़ी प्यार दुलार मोहब्बत शुभकामना के साथ पेश किए। सुल्फेन की रहने वाली सुशीला चंद्रिका सिंह गंगाराम बताएंगा आज 80 साल का जन्मदिन है। तख्त सफिया रखें खुद अपने आप के लिए प्रोग्राम में फरमाइश के हैं।

आज है शनिचर 18 जुलाई। तो आम सुल्फीन की रहने वाली सुशीला चंद्रिका सिंह गंगाराम पांडेय का आज 80 साल का जन्मदिन है। इस जन्मदिन के उपलक्ष्य पर लड़कन आशा, शारदा, मालती, रजेश और रेशमा प्यारी प्यारी माँ के लिए दो दमाद, सुरेन और रवि और पतो अंशिता प्यारी प्यारी सास के लिए बड़ी प्यार दुलार मोहब्बत के साथ फरमाइश किए। आम सुल्फीन की रहने वाली सुशीला चंद्रिका सिंह गंगाराम पांडेय का 80 साल का जन्मदिन आज है। इस जन्मदिन के खुश के मौके पर लड़कन आशा, शारदा, मालती, रजेश और रेशमा माँ के लिए और दो दमाद सुरेन और रवि एंड पतो अंशिता प्यारी प्यारी सासू जी के लिए बधाइयां शुभकामना के साथ पेश करें।

हमसे विंग के रहने वाली सुशीला चंद्रिका सिंह गंगाराम पांडे का आज 80 साल का जन्मदिन है और इस जन्मदिन के खुशी के मौके पर लड़कन आशा शारदा मालती रजेश और रिश्मा प्यार प्यारी माँ के लिए दो दामाद सुरेन और रवि और पुतो अंशिता अपनी प्यारी प्यारी सास के लिए बड़ी प्यार दुलार मोहब्बत के साथ नामा को फरमाइश किया। सुशीला चंद्रिका सिंह गंगाराम पांडे का 80 साल का जन्मदिन आज है। जन्मदिन के खुशी के मौके पर नाम क्लैंग के इंद्रन वरिषा तनिष्ठा द्रोणिका नील्स वीरांशा संजीवन अर्चना और सविता की तरफ से नानी के लिए मीरा और नेहा आज के लिए बड़े प्यार दुलार मोहब्बत के साथ पेश करें। सुनिया

आज है शनिचर 18 जुलाई, तो अम्सलविंग की रहने वाली सुशीला चंद्रिका सिंह गंगाराम पांडे का 80 साल का जन्मदिन है और इस जन्मदिन के खुशी के मौके पर खासकर लड़कन क्लैन केंद्र वरिषा तनिष्ठा द्रोणिका न्यूज वीरांसा संजीवन अर्चना एंड सविता नानी के लिए एंड मीरा नेहा आज के लिए बड़े प्यार दुलार मोहब्बत के साथ फरमाइश के सुपर नानी एंड सुपर आज के लिए सुशीला चंद्रिका सिंह गंगाराम पांडे का आज 80 साल का जन्मदिन है। जन्मदिन के खुशी के मौके पर खुद अपने आप के लिए फरमाइश किए हैं।

आज है शनिचर 18 तारीख जुलाई, बड़ी खुशी का दिन है क्योंकि अमसोफेन की रहने वाली सुशीला चंद्रिका सिंह गंगाराम पांडे का 80 साल का जन्मदिन है। जन्मदिन के खुशी के मौके पर खुद अपने आप के लिए फरमाइश किए की रहने वाली सुशीला चंद्रिका सिंह गंगाराम पांडे का 80 साल का जन्मदिन आज है। ये जन्मदिन के उपलक्ष्य पर भगवान से प्रार्थना किया जा रहा है लंबी आयु के वास्ते, ताकत तंदुरुस्ती के लिए, और ये भी प्रार्थना है कि आपको हर एक मुसीबत से, हर एक बीमारी से दूर रखे, आप सदा खुश रहें। लाइफ लॉन्च से ना तो कमर्शियल ब्रेक, बाकी की फरमाइश उजाला रेडियो के जरिए पेश किया जाएगा। सुन वालों, उजाला रेडियो के जरिए फरमाइश देना है, स्टूडियो ईमेल info@ujala.net। 15 aanvragen voor maar €100 op UR Ujala Radio. Blijf luisteren, tot straks.

Lunch Arms the Link रहने वाली सुशीला चंद्रिका सिंह गंगाराम पांडे का 80 साल का जन्मदिन है. जन्मदिन के खुशी के मौके पर नामकिंद्रन आशा शारदा मालती रजेश और रेशमा की तरफ से प्यार प्यारी माँ के लिए दोदमा सुरेन और रवि और पुतो अंशिता प्यार प्यारी सांस के लिए बड़ी प्यार दुलार मोहब्बत के साथ फरमाइश करें. सुशीला चंद्रिका सिंह गंगाराम पांडे का 80 सफेद आज है. नामज क्लाइन केंद्र वरिषा तनिष्ठा द्रोणिका नील्स विरांसा संजीवन अर्चना एंड सविता नानी के लिए मीरा एंड नेहा आज के लिए बड़ी प्यार दुलार मोहब्बत बधाई शुभकामना के साथ पेश करें.

हम सुल्वेन के रहने वाले सुशीला चंद्रिका सिंह गंगाराम पांडे का 80 साल का जन्मदिन आज है। जन्मदिन की खुशी के मौके पर खुद अपने आप के लिए फरमाइश के प्रोग्राम में हम सुल्वेन के रहने वाली सुशीला चंद्रिका सिंह गंगाराम पांडे का आज तख्त से व्यारा है। इस जन्मदिन के शुभ अवसर पर लड़कन आशा, शारदा, मालती, रजेश और रेशमा माँ के लिए, दो दामाद सुरेना रवि एंड पतो अंशिता सास के लिए बड़ी प्यार दुलार मोहब्बत के साथ पेश करें।

हम सुल्फीन के रहने वाले सुशीला चंद्रिका सिंह गंगाराम पांडेय का 80 साल का जन्मदिन आज है। जन्मदिन के उपलक्ष्य पर लड़कन आशा शारदा मालती रजेश और रेशमा प्यार प्यारी माँ के लिए दो दमाद सुरेन और रवि और पुतो अंशिता प्यार प्यारी सास के लिए नहमा को फरमाइश के। हम सुल्फीन की रहने वाली सुशीला चंद्रिका सिंह गंगाराम पांडेय का 80 साल का जन्मदिन आज है। जन्मदिन के उपलक्ष्य पर नाम से क्लैंग केंद्र वरिषा तनिष्ठा द्रोणिका नील्स विरांसा संजीवन अर्चना एंड सविता नानी के लिए मीरा और नेहा आज के लिए बड़ी प्यार दुलार मोहब्बत के साथ पेश करें।

0: Bram Sylvain, Kirene Wallisch, Sushila, Chandrika Singh, Gangaram, Pandeka, Assisal, ka jenemdien aan. Het 80ste verjaardag had je. Is jenemdien keer goeie gemaakt met namens de kleinkinderen. Warisha, Tanishta, Dronika, Niels, Viransa, Sanjeevan, Arjana en Savita. Nani Kleer, Mira, Oneha, Aji Kleer, Bripjaar, Dular, Mahabit, gezet voor meisje.
1: Bekerar hoke.
0: और भी फरमाइशें जारी किया जा रहे हैं सुशीला चंद्रिका सिंह गंगाराम पंडे के लिए 80 साल के जन्मदिन के शुभ अवसर पर खुद अपने आप के लिए फरमाइश कहें ये शानदार से नगमा

आज है शनिचर 18 तारीख जुलाई अम्सलफेन के रहने वाले सुशीला चंद्रिका सिंह गंगाराम पंडित का 80 साल का जन्मदिन है। जन्मदिन के शुभ अवसर पर खुद अपने आप के लिए फरमाइश के प्रोग्राम में ये शाम दर्शन हमारे प्रोग्राम में आखिरी फरमाइश हम ला रहे हैं सुशीला चंद्रिका सिंह गंगाराम पंडित के लिए 80 साल तख्त सफेद के उपलक्ष्य पर और इस खुशी के मौके पर लड़कन आशा शारदा मालती रजेश और रेशमा माँ के लिए दो दमाद सुरेन और रवि पतो अंशिता सास के लिए नमस आलोक क्लैंग केंद्र नानी और आजी के लिए प्यार दुलार मोहब्बत और शुभकामना के साथ पेश है।

सिल्वेन की रहने वाली, आम सिल्वेन की रहने वाली सुशीला चंद्रिका सिंह गंगाराम पांडेय का आज 80 साल का जन्मदिन है। इस जन्मदिन के उपलक्ष्य पर नाम आशा शारदा मालती रजेश एंड रेशमा, माँ के लिए दो दमाद सुरेन और रवि, और पोतो अंशिता, सास के लिए नाम अलग क्लैंग केंद्र फॉर नानी, और आज के लिए बड़ी प्यार दुलार मोहब्बत और शुभकामना के साथ फरमाइश किए। हम सुल्वेन की रहने वाली सुशीला चंद्रिका सिंह गंगाराम पदे जितनी से फरमाइश था 80 साल के जन्मदिन के खुश के मौके पर अब समाप्त होने पर आए हैं। उजाला रेडियो के जरिए फरमाइश सुनने देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। एक वेंस यून हेल फैन दाग नामस उजाला रेडियो फन हार्दिक फेलिस्टेट मेट यू 80ste verjaardag। मोई से फरियारी मने समस्त परिवार के साथ एक शुभ शाम शुभ रात्रि। ये हैं उजाला रेडियो सुनने वालों और उजाला रेडियो के जरिए आपने सुने हैं फरमाइश। अगर आपको उजाला रेडियो के जरिए फरमाइश देना है सुनने वालों, स्टूडियो ईमेल ना info@ujala.nl और भी 15 aanvragen voor maar 100 euro op UR Ujala Radio. 15 aanvragen voor maar 100 euro op UR Ujala Radio. Stuur je e-mail naar info@ujala.nl. Je had de kaart dus een vermaaijokje hebben gegeven, zo'n wallo. Blijf luisteren naar Ujala Radio. Aan wil ik doen meer vier hamaafse middelen Ujala Radio. Mooi zeer hier. Het is een mooi weekend. Maak er een mooi weekend van. Parivar, jaan bij jaan, kisar, dosto kisar. Let goed op jezelf. Let goed op anderen. Mooi zeer hier.

तैयार हो जा, तैयार हो जा, तैयार हो जा, सुन वालो, उजाला ला रहे हैं उजाला ब्रासा मेला फेस्ट इंडोर समर एडिशन डेन हाग में. Food, music, dance, shop, market culture, family entertainment, taste, Bollywood vibes and beats. Tu tayyar ho ja aur jaldi se apan ticket khareed le. Brasa Fest, zaterdag 29 en zondag 30 augustus. GIA Event Center Den Haag mee. Get your early bird tickets now via brasafest.nl. Super early bird tickets vanaf slechts €8,50. Koop je tickets uitsluitend via de officiële festivalwebsite brasafest.nl. Brasafest, powered by utix.nl en Ujala Radio. Brasafest.nl.

अगर आपके घर पर जन्मदिन है, सालगिरह है, जो भी खुशियां है, उजाला रेडियो पर अगर आपको फरमाइश देना है, 15 फरमाइश 15 फ्रागे फॉर मोर 100 यूरो ऑफ उजाला रेडियो, स्टूडियो ईमेल नार info@ujala.nl info@ujala.nl 15 vragen voor maar 100 euro op Ujala Radio.

मुंडन संस्कार होने वाला है पूजा रेडियो पर आप फरमाइश दे सकते हैं 15 फरमाइश Voormaar 100 euro op Ujala Radio. Stuur je mail naar info@ujala.nl. info@ujala.nl.

ये ना कि खुशी हो या गम, खुशी हो या गम, उजाला रेडियो है आपका साथ हरदम, तो इसलिए हमेशा सुनते रहना।

हम इस गीत को यहीं पर रोक देते हैं, इस वादा के साथ कि बहुत जल्दी इस गीत को हम आपको पूरा, हाँ पूरा सुना देंगे। यस, फिल्म का नाम सत्य पे सत्ता, और हम ये याद रखेंगे कि गीत हमें पूरा सुनाना है कभी ना कभी, मगर बहुत जल्दी।

मोहम्मद रफी साहब के साथ आशा जी। फिल्म का नाम तीसरी मंजिल, तीसरी मंजिल फिल्म से गीत आप सुने। उजाला रेडियो है ये, तू जाने है तो

सारा जहां छोड़ के मैंने तुझे सलाम किया है। मोहम्मद रफी एंड उषा मंगेशकर से आप गीत को सुने।

धीरे धीरे से मेरी जिंदगी में आना। अनुराधा पौडवाल के साथ कुमार सानू, फिल्म आशिकी का गीत उजाला रेडियो को आप सुन रहे हैं। फॉर इन्फॉर्मेशन कैक आप www.ujala.nl कॉम ये नीट आउट डॉन स्टूडियो मेल च नार इन्फो आप स्टार्ट ujala.nl ऑफ ये बेल टाइडेंस कंटोर उरन 020 409 0807।

मुझे, हाँ मुझे रात दिन बस मुझे चाहती हो। सोनू निगम की आवाज और फिल्म संघर्ष से आप सुने हैं।

मुझे से नाराज नहीं जिंदगी, हैरान हूं मैं। फिल्म मासूम, गायक अनूप घोषाल। उजाला रेडियो का प्रोग्राम सुनने वालों, इस हिस्सा का प्रोग्राम में भी आपको स्वागत करता हूं, शामिल होने के लिए, हमारा साथ देने के लिए, और अच्छे से अच्छे गीतों हम सेलेक्ट करके रखे हैं आपके लिए।

दे दो ना, तुम मुझे दे दो अपने गम। इसलिए तो हम कहते हैं हमेशा खुशी, हाँ खुशी हो या गम, खुशी हो या गम, उजाला रेडियो है आपका साथ हरदम। कुणाल गांजावाला से गीत आप सुने, फिल्म बाबुल से।

हम दिल दे चुके सनम और तेरे हो गए हैं हम तेरी कसम। और अगर कसम काफी नहीं है तो कसम की कसम भी देता हूं। कविता कृष्णमूर्ति एंड मोहम्मद सलामत के साथ डोमिनिक, फिल्म का नाम हम दिल दे चुके सनम, या नॉक स्टेट्स क्लिंगत प्रख्तख। उजाला रेडियो है ये सुनने वालों। अब कोई मिल गया

ने के सहारे तू जाने है तो कस्मे वादे, हाँ कस्मे वादे फिल्म से आप गीत को सुने।

अब तू हाँ कर या ना कर, तू है मेरी किरण। उदित नारायण से गीत आप सुने फिल्म डर से, और अब तेरी उम्मीद तेरा इंतजार।

0: सनम हम तो सिर्फ तुमसे प्यार करते हैं,
1: तुमसे प्यार करते,
0: इसलिए तो तेरी उम्मीद और तेरा इंतजार करते हैं। फिल्म दीवाना, गीत के गाने वाले कुमार सानू एंड साधना सरगम, उजाला रेडियो पर। और हम बाती उजाला रेडियो के, और उजाला रेडियो है आपके। सो सिंपल।

क्यों यहाँ कोई पास है कोई दूर है, क्यों क्यों है ये दूरियां। महेश चौहान की आवाज, फिल्म लव आजकल।

अंधेरा में सभी लोग उजाला को ढूंढते हैं, इसलिए हम कहते हैं कि इस उजाला को अपने दिल में बंद करके रख लीजिए।

0: are.
1: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Op de A12 vanuit Arnhem naar Duitsland heb je voor de grens 10 minuten vertraging. En de A16 Breda-Rotterdam tussen de Moerdijkbrug en Zwijndrecht 10 minuten vertraging door een auto met pech. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Namaskar, assalamu alaikum. मैं हूं शहीद गुलजार यह है उजाला रेडियो यूआर का पैगाम आप सुन रहे हैं फिर से आपके खिदमत में हाजिर हूं लेकर कुछ मिले जुले संगीत सिलेक्शंस जो आप रोजाना नहीं सुनते हैं आइए सबसे पहला सिलेक्शन ज़ोहब हसन की आवाज़

Bolo bolo bolo bar bar, क्या है मेरा नाम? ज़ोहब हसन के आवाज में आप सिलेक्शन सुने हैं उजाला रेडियो के जरिए। हम आपको प्रोग्राम में अभी एक मुकाबला कवाली सुनाने वाले हैं। आप सुनते रहे ना प्रोग्राम को, सुनते ही जाना। अभी कुछ ही देर में हम आपको एक मुकाबला कवाली सुनाने वाले हैं। शायद ये कवाली भी आप बहुत दिनों नहीं सुने हैं, लेकिन उससे पहले दूसरा आदमी नामक फिल्म से आइए मिलकर सुनते हैं किशोर दा और द नाइटिंगेल लता की आवाज़।

शुरू का बादशाह मोहम्मद रफी साहब, हसीनों के पुजारी किशोर कुमार और द नाइटिंगेल लता मंगेशकर की आवाज। वादा के मुताबिक हमने अभी आपसे कहा है कि हम आपको एक मुकाबला कवाली सुनाने वाले हैं, तो आइए मिलकर सुनते हैं यूसुफ आजाद कवाल और मोहतरमा रशीदा खातून की आवाज में के हड़ताल करेंगे दिल वाले। मजेदार कवाली है, आइए मिलकर सुनते हैं यूसुफ आजाद और रशीदा खातून की आवाज। स्टेशन है उजाला रेडियो।

मजेदार मुकाबला कवाली आपने अभी सुने हैं यूसुफ आजाद कवाल और रशीदा खातून की आवाज में। द राजन्स के साज पर आइए मिलकर सुनते हैं तू पास है मेरे। उजाला रेडियो का पैगाम है, आप प्रोग्राम को सुनते रहना, सुनते ही जाना, आप हमें जहां से भी सुन रहे हैं।

हम आपको कुछ अच्छे अच्छे सिलेक्शन सुना रहे हैं, कुछ मिले जुले संगीत आपकी खिदमत में नशर है। ऐसे में आप अभी सुने हैं राजंस के साज पर, तू पास है मेरे, तू साथ है मेरे, अजीब हादसा हुआ ये कैसे। हम आपको अब प्रोग्राम में एक हार्ट ब्रोकन सॉन्ग सुनाने वाले हैं, और ये है द हार्ट ऑफ मिलियंस, दमायती मुकेश जी की आवाज। वो तेरे प्यार का गम एक बहाना था सनम, अपनी किस्मत कुछ ऐसी थी कि दिल टूट गया। लीजिए द हार्ट ऑफ मिलियंस, दमायती मुकेश।

0: रेडियो के क्षेत्र पर हर एक काम काज के वास्ते आप डायल करें एम्स्टरडम में 0204090807 पर 020-409-0807 पर या आप लिख सकते हैं info@ujala.nl. Just enjoy the vibrations of UR Ujala Radio. Radio. Tu jaane hai, toh.
1: The most sensational and
2: the best. The best.
0: ओहो ओहो तुमसे दूर रहकर हमने जाना प्यार क्या है. द नाइटिंगेल लता और मोहम्मद रफी साहब.

द नाइटिंगेल लता मंगेशकर और सुरों का बादशाह मोहम्मद रफी साहब की आवाज में आप अभी सिलेक्शन सुने हैं। और मिले जुले संगीत में मुझे तुम याद करना और तुम मुझे याद आना, क्या बात है।

मुझे तुम याद करना और मुझको याद आना तुम, हसीनों के पुजारी किशोर कुमार और नाइटिंगेल लता मंगेशकर की आवाज आप अभी सुने. यस माय डियर, एंजॉय द वाइब्रेशंस ऑफ यू आर वेर एवर यू आर. आइए मिलकर सुनते हैं पास नहीं आना, पास नहीं आना ना हटो ना, पास नहीं आना दूर नहीं जाना.

हाँ जी सुना आपने, पास नहीं आना भूल नहीं जाना, तुमको सौगंध है कि आज मोहब्बत बंद है। द नाइटिंगेल, लता मंगेशकर और हसीन के पुजारी किशोर दा की आवाज़ आप अभी संरक्षण प्रोग्राम में सुने हैं। वैसे रेडियो के बारे में, यानी कि रेडियो के क्षेत्र पर आपको कोई भी काम करवाना है तो आप डायल कर सकते हैं सोमवार से लेकर शनिवार तक सुबह में 10 बजे से लेकर दिन में 3 बजे तक, और फ़ोन का नंबर है 02040908 07 पर, 02040908 07 पर। वंस अगेन प्रोग्राम में सुरों का बादशाह मोहम्मद रफी साहब की आवाज़, किया हुआ तेरा वादा।

सुरु का बादशाह मोहम्मद रफी साहब की आवाज में आप भी सुने हैं क्या हुआ तेरा वादा। उजाला रेडियो का पैगाम है, आपकी खिदमत में स्टूडियो में हाजिर है आपका खादिम शहीद गुलजार। मिले जुले संगीत में आइए, फिल्म सागर से आइए, मिलकर सुनते हैं द मेलोडी क्वीन आशा जी की आवाज के जाने दो ना पास आओ ना। साथ दे रहे हैं शैलेंद्र सिंह। जाने दो ना हटो ना।

यू आर उजाला रेडियो के सभी सुनने वालों को नमस्कार, सलाम वालेकुम। मैं हूं शहीद गुलजार। मिले जुले संगीत के साथ हम स्टूडियो में फिर से हाजिर है और ऐसे में आइए मिलकर सुनते हैं अलीशा चिनोई की आवाज में मोंशेरी मोंशेरी, अरे हो गई मैं तेरी, मानो कसम से।

Mon chéri, mon chéri, refogueille mes terres. Parlez-vous français? मजेदार सा रशियन आपके खिदमत में अर्ज की गई है उजाला रेडियो यू आर के जरिए आपकी खिदमत में, जैसे कहा शहीद गुलजार हाजिर है। लीजिए सेलेक्शन किशोर दा की आवाज, मुकद्दर का सिकंदर फिल्म से, ओ साथी रे तेरे बिना भी क्या जीना।

0: for music.
1: Enjoy the vibrations of Ujala Radio wherever you are.
2: You are. You are.
3: The most sensational and
4: the best.
5: The best.
1: लीजिए प्रोग्राम में पेश खिदमत है नाजिया हसन की आवाज तेरी याद आती है ब्रिकार्ड का टाइटल हॉटलाइन

वो तेरी याद आती है, सूरज चलता है, बस तेरी याद आती है, नाजिया हसन की आवाज। ओ कितना प्यारा वादा है इन मतवाली आंखों का, सुरो कबाचा मोहम्मद रफी साहब। स्टेशन है यू आर उजाला रेडियो, फोन का नंबर 020-409-0807, हर एक कामर काज के वास्ते। कितना प्यारा वादा।

0: कितना प्यारा वादा,
1: वो कितना प्यारा वादा है इन मतवाली आंखों का। सुर का बादशाह मोहम्मद रफी और द नाइटिंगेल लता मंगेशकर की आवाज। सम फैबुलस सॉन्ग्स ब्रॉडकास्टेड बाय यू आर उजाला रेडियो। के श्रोताओं को एक शुभ दिन प्रकट किए जा रहे हैं स्टूडियो से एम्स्टर्डम से। आप हमें जहां से भी सुन रहे हैं, आप सभी खुश रहे और सलामत रहे। कुछ मिले जुले संगीत मिक्स मार्क सॉन्ग्स आपके मध्य में प्रस्तुत किए जा रहे हैं और एक और सिलेक्शन हो जाए। इस बार है किशोरदा, फिल्म का नाम एक और सिकंदर। धड़का दिल दिल दिल दिल भर जाने के लिए, अरे हो गया सहारा जिंदगानी के लिए।

धड़का दिल दिल दिल दिल भर जाने के लिए अरे हो गया सहारा सारी जिंदगानी के लिए। हम आपको सुना रहे हैं कुछ सिलेक्शंस जो आप रोजाना रेडियो पर नहीं सुनते हैं। युवा के जरिए अब एक नगमा हम आपको सुनाने वाले हैं। ये ज्यादा पुराना सिलेक्शन नहीं है। फिल्म का नाम नसीब, सन 1981 का फिल्म, 1981 का फिल्म नसीब से द नाइटिंगेल, लता मंगेशकर की आवाज में, मेरे नसीब में तू।

The Rocking Sensation, You Are उजाला रेडियो को आप सुन रहे हैं. लीजिए शेर पेशे खिदमत है कि चांदनी चांद से होती है सितारों से नहीं, चांदनी चांद से होती है सितारों से नहीं, मोहब्बत एक से होती है हजारों से नहीं. मेरे जीवन साथी नामक फिल्म से किशोर दा और आशा जी की आवाज़, दीवाना लेके आया है दिल का तराना.

0: निवाना लेके आया है दिल का तराना, किशोरदा की आवाज, फिल्म का नाम मेरे जीवन साथी।
1: दिल का तराना दीवाना लेके आया,
0: डाउन मेमोरी लेन सॉन्ग्स आपके मध्य में प्रस्तुत की जा रहे हैं। रेडियो के क्षेत्र पर हर एक कामकाज के वास्ते आप डायल करें एम्स्टरडेम में 0204-0908-07 पर, 020-409-0807 पर, या आप लिख सकते हैं info@ujala.nl। जस्ट एंजॉय द वाइब्रेशंस ऑफ यू आर उजाला रेडियो। रेडियो तू जाने है तो
2: द मोस्ट सेंसेशनल एंड
3: द बेस्ट

0: अरे दूरी सही जाए ना,
1: दूरी सही जाए ना।
0: हमारे सुनने वालों के मनोरंजन के वास्ते उजाला रेडियो के माध्यम से फेंका जा रहा है आकाशवाणी, दयाबे इंटरनेट, उजाला ऐप और पता नहीं कहां कहां से आप हमें सुन रहे हैं। मैं तो कान से सुनता हूं।

यू आर उजाला रेडियो का पैगाम आप सुन रहे हैं, शहीद गुलजार हाजिर है और कुछ मिले जुले संगीत में अब हम आपको एक गोल्डन ओल्डी सिलेक्शन सुनाने वाले हैं। वो चेहरा तेरा अल्लाह अल्लाह बातें तेरी माशा अल्लाह बड़ी बड़ी आंखों वाली जादू की है तूने बोला मुझसे बेहतर आप सुनिए मोहम्मद रफी साहब की आवाज में चेहरा तेरा अल्लाह अल्लाह बातें तेरी माशा अल्लाह। फिल्म का नाम तुम हसी मैं जवान।

तुम साथ हो जब अपने, किशोरदा और आशा जी की आवाज। स्टेशन है उजाला रेडियो, यू आर का पैगाम आप सुन रहे हैं। आप हमें जहां से भी सुन रहे हैं, आप खुश रहे और सलामत रहे। वैसे रेडियो के काम के वास्ते, रेडियो के क्षेत्र पर हर एक काम काज के वास्ते आप डायल कर सकते हैं सोमवार से लेकर शनिवार तक सुबह में 10 बजे से लेकर दिन में 3 बजे तक। फ़ोन का नंबर है एम्स्टर्डम में 020-409-08-07-020-409-08-07 पर।

बस हम आपसे यही कहेंगे कि यूआर का पैगाम को आप सुनते रहना और सुनते ही जाना। हम आपसे फिर मिलेंगे। मैं हूँ शहीद गुलजार। ओ मारिया, ओ मारिया।

0: Live vanuit de Hoofdstad.
1: अगर आपके घर पर जन्मदिन है, सालगिरह है, जो भी खुशियां हैं, उजाला रेडियो पर अगर आपको फरमाइश देना है, 15 फरमाइश, 15 आवाजें फॉर मार 100 यूरो ऑफ उजाला रेडियो, स्टूर योर ईमेल नर info@ujala.nl, 15 आवाजें फॉर मार 100 यूरो ऑफ उजाला रेडियो।

सभी संगीत प्रेमियों को मेरा नमस्कार। मुझे खुशी है कि एक बार फिर अपने नए एल्बम आपकी सेवा में मैं और मेरे साथी लेकर हाजिर हूँ। आपके प्यार, स्नेह और पसंद की वजह से ये मुमकिन हो पाया। अब की बार मैंने अपने को सिंगर्स के साथ डुएट्स, मेरा मतलब है युगल गीत, पेश किए हैं। एक सीडी में मेरे सेमी क्लासिकल फिल्मी गीत हैं जो मुझे बहुत पसंद है। इस संग्रह में शामिल हैं मेरे पसंदीदा सीनियर सिंगर्स के लाजवाब गाने और कुछ गैर फिल्मी गीत भी। इन गीतों को याद करते वक्त वो जमाना याद आ गया जब इन गीतों की रिकॉर्डिंग हुई थी और बहुत सी यादें ताज़ा हो गईं। कुछ दोस्त पुराने आ पहुँचे और जिक्र तुम्हारा चल निकला। आँखों में चढ़ी बरसात बहुत, यादों में ढले नगमात बहुत।